ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ

तेरी ये जवानी को मिला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

जे पूछिए पाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कवेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है, टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साढ़े हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलती है उसनों मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने पाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, ते फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਓ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ।

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छी।

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सुकहाने जाई।

कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

Gaga,

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पईआ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पईआ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया की उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया की परवाह ना कर दी हुई उसके मगर लग पईआ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आया वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दी, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दी ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगी

आए आवाज दिती, मां माता त्रिपता ने पछाण लिया ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा, गुरु नानक पातशाह ने अगा होके मां नूं मां दे गल ना लगे। माता त्रिपता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलिया तां की वेख्या, चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े। आख्या, बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं, ओ तां जिस वेले रोटी खाउंदे न यही कहिंदे हन कि इस हथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मूंह ते चपेड़ मारी तां हथ विचों बुरकी डिग पैंदी है। मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए, मैं ता कालू पिता दे चरणां नूं हाथ लाया, चरण स्पर्श कीते। पिता कालू ने गल ना ला लिया, बेटा मेरे तो पहले भी राय बुलार नूं मिल जेड़ा ओ जंगल विच बन हेठां बैठा है, गुरु नानक कूक रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठां, की वेख्या राय जी कदे इस पासे मूंह करके बैंदा है कदे इस पासे मूंह करके बैठ, सोचदा खबरे इथों ना आ जाऊं फिर सोचदा खबरे दूजे पास्यों ना आ जाऊं मेरी पिठ ना हो जाए, ताई आ सोच रिया ते पिछे आवाज आई, राय जी असी आ गए दी आवाज सुनी। राय ने परत के वेख्या सामने गुरु नानक खड़ोता, चरना ते डिग पिया। आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी ते सारे हुण एक मन

अंगारे फुल बन गए। ऐथे ही बस नहीं, खंबा तपा के लाल कीता है अगनार। हुकम होया हरनाकश दा, प्रहलाद नू इस खंबे नू गलवकड़ी पा। मैं वेखदा तेरा परमात्मा, तेरा परमेश्वर, तेरा राम तैनू किवें बचाण वास्ते आउंदा है। जदों प्रहलाद अगे वध्या, खंबे नू गलवकड़ी पाण वास्ते उस खंबे दे विच्चों सेक आया, क्योंकि अगनाल तपा के लाल कीता होया सी। मन थोड़ा जा डोल गया भगत दा, अंदरों आवाज आई, हे भगवान, जे मैं इस खंबे नू गलवकड़ी च लिया ते मैं ते सड़ जावांगा। कहंदे ने ऐसी एक दंत कथा

ने देग दे विच पानी उबालिया, उहदे विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं खौल दे पानी दे विच बिठा दिता गया। शरीर दे उत्ते इंज फलुवे पै गए जिवें कोई आलू नूं उबालदा है, पर मुख तों जराक भी सी नहीं, उफ तक नहीं। एथे भी जदों जालम नूं तसली ना होई, भट्ठी उहदे उत्ते तवी रख

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण चलो मार्ग गोविंद। एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने, ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर लै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सिखे हम बालक, साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बालक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरियां होर माड़ियां जितनियां भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

है दूर वगा के मार दी है। बच्चा भज के जांदा है, गेंद चुक के लिआउंदा, फिर मां नूं आके परेशान करदा है। मां फिर उस गेंद नूं लैके दूर वगांदी है, बच्चा फिर भज के जांदा है। इस प्रकार नाले ए मां अपना कम पई करदी है, नाले अपने बच्चे नूं खेड़दा वेख के बड़ी खुश हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है। मन विच उमंग है, मन विच खुशी है, मेरा बच्चा हुण खेडण जोगा हो गया। इसे प्रकार कुछ समा बीतिया, इस वारी बच्चे ने गेंद लिया के फिर मां नूं दित्ती। मां ने बेध्याने होके उसे तरह फिर गेंद वगा के मारी, दूर सुट्टी। इस वारी ए गेंद जेड़ी सी बनेरी नाल टकरा के थल्ले जा पई। मां अपने कम विच मशगूल है, इधर ए बच्चा पहले वांग ही भज्जा उस गेंद दे पिछे। हुण बच्चे नूं की पता है कि ए बनेरी तो अगे कोठा खत्म है। छोटा जा बालक, मासूम बच्चा गेंद दे पिछे भज्जिया, गेंद ते टकरा के बनेरी नाल ओ थले डिग पई। ते बच्चे ने जो ही गेंद दे पिछे भजना शुरू कीता, ओदा भी ध्यान चुक गया ते बनेरी नाल टकरा के ओ भी धड़ाम करके थले जा पिया। मासूम बच्चा, छोटा जा बालक, फुल जिहा ओ बच्चा टकराया बनेरी दे नाल, थले जा डिगा और डिगदे ही ओदे प्राण खत्म हो गए। मां ने वेखिया, एकदम कुरलाहट मच गई, रुदन शुरू हो गया। जिथे थोड़ी देर पहला खुशी सी, जिथे थोड़ी देर पहला खेड विच मस्त सी ए मां, बच्चे नूं वेख के खुश हो रही सी, उत्थे हुण रुदन हुंदा पिया। विरलाप कीरने पई पा रही है ए मां, आला दुआला कट्ठा हो गया और इस बच्चे नूं वेख वेख के जो थोड़ी देर पहला खेड़दा पिया सी ते हुण बिल्कुल इहदे प्राण खत्म ने। सारी ही हैरान हन। भगत कबीर जी इस घटना नूं वेख के कहंदे ने, ए भोली मां, ये तो सोचती है कि मेरा बच्चा हुण दिन पर दिन वड्डा हुंदा जा रहा है, असलियत तो ये जाणू नहीं। असलियत की है? आप कहंदे ने इतना क ना जाने जे दिन दिन औध घटत है। इसनू ये पता नहीं कि मेरा बच्चा वड्डा नहीं बल्कि असलियत ये छोटा हो रहा है। वो किवें? भला जे इस बच्चे की उम्र लिखी है 5 साल, अज ये 4 साल का हो गया है, बाकी तो 1 साल रह गया, 1 साल बाकी रह गया, 4 बीत गए। भगत जी कहंदे ने बस ऐसे भुलेखे विच असी पए होए हाँ, सारा संसार पिया होया है। सच नूं छड़ के, परमेश्वर नूं छड़ के असी झूठी दुनिया दे मगर लग के इनू सच्चा करके मन बैठे हाँ। हजूर भगत कबीर

कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमृत पवजल तरिया, भगत अमृत भी संसार सागर तू पार होके बैकुंठ नु चले गए।

भगत अम्बरी कुमारी भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच अम्बरीक मोह वर्त है रात पई दुर्वासा आया ए राजा अम्बरीक जिन्हां दे पिता दा नाम ना भाग सी राजा अम्बरीक दा राज मध्य भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अम्बरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा। राज भी कर रहा है पर नाल भगती भी। एदी भगती तों दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीक दी रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुकम सी तू अम्बरीक दी रक्षा करनी। इस गल दी गवाही भाई गुरदास जी भी भरदे। राजे अम्बरीक ने वर्त रखे पूजा पाठ कराया यज्ञ कराया और दान पुन करन वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अम्बरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी नेक बड़ा सी दान पुन करके ए राजा अम्बरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे रस्ते दे विच दुर्वासा रिखी दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिखी नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे। राजा अम्बरीक कहन लगे मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिखी कहन लगे ठीक है राजन। जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अम्बरीक कहन लगा सतवच ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ये मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा रिखी, चाहिदा तां ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारे ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अम्बरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहे, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अम्बरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, उस श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिए तो वह श्राप देन वास्ते तैयार हो गया, अखा गुस्से ना लाल हो गई है। कहन लगा राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होने कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े है, पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता उस चड़ेल नूं, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नूं कहा ए जड़ा राजा अम्बरीक है इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनों खत्म।

दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म किया, ओ चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नू मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्भाषा ऋषि एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म दा काम करन लगे। पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करदे ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए, पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्भाषा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड़ी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड़ी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्भाषा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्भाषा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ये भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हाँ, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नूं प्यारी है। तां की होया, ब्राह्मण पढ़ना जियो लै कि ओ ब्राह्मण दुर्भाषा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण पढ़ना जियो लै रखिया ना हंगण देव सुभाया, हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उहनूं फिर कौन बचावे। ए दुर्भाषा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नूं, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहन लगा ए मेरे वस दी गल नहीं, तां दुर्भाषा ऋषि शिव लोक नूं चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे हुण मेरे भी वस दी गल नहीं। दुर्भाषा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नूं गया, तां ब्रह्मा जी कहन लगे तेनू बचाना हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। तां फिर दुर्भाषा ऋषि बैकुंठ नूं चला गया विष्णु भगवान दे कोल, तां विष्णु भगवान कहन लगे कि मैं भी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही

सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारे ने समझाया है कि दुर्बाशा तू भगत नू बुरा के, तू भगत नू दुख देना चाहे, इस करके अगर वो भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं ता तेरा बचना बड़ा औखा है।

ओ परमेश्वर, जिस तरह उन्हें भगत अमरीक की रखा की, ना उन्हें दे ठाकर दई सुदामे त्रू अटल अजूना टरियो, अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की, त्रू भगत ते कृपा की, भगत हेत मारियो हरनाकश, भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाकश का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते नी केसव परमेश्वर नू के है, सोने केसां वाला परमेश्वर, ये वो जिहड़ा परमेश्वर है वो भगतां दे वास्ते है। इस वास्ते तां अज तक वो बल राज दे द्वारे ते खलोता होया है। तो गुरु साहिब जी भी बाणी विच कहिंदे ने, भाई अमरीक ने सिमरन कीता, राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी, ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुस भी सिमरन करो, दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू

गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करते ने जेड़ा आके उन्हें सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहे हैं प्रभु जस मान रहे हैं और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार न तावत है भटकना मुक जाती है लिव जुड़ जाती है जीवन का आनंद लेंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खारा पावे कार एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार कोई जी आख है सुख है जाने तिलक तेरी सार नानकू भगता पुख सलाहनु सच नाम आधार।

सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। तैसे हर जन

अनमल खाई सिर छाई पाई मूर्खन दे पत गवाई बिनाए किछ थाए ना पाई रहे बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे।

छड़ बहे करवार सर को बुरा पे हुए काट न कुइया खे पात्रवाना पीछे पाइए ता नानक तोलिया जापे वदी समझ नानका सच्चा देखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी देखे पत्तो है चंगे से ही के पौड़ी तुल कर जिना को तुम पाया ताकि अपनी खसम ते आया है न जलता के उसके जनाई तुद वेख की जग तू आया एक रानो

चार विचारी पाव पंकरी रिचदारी पावनाने तुझी लोकन से भाई बड़ी से गुरु तुम्हारे यार जित मिले ऐसा सुन संभाले अजर कर देश क्या नहीं दिया इन्हें त्रिजा भी तुम्हें हाले आ कसम तोड़ी।

तेड़ तो सीख खाई हाथ छुरी जगत का साई नील बसर पैर होवे परवान मलेश तहां ले पूजे पुराण।

ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ।

एक रही चाकरी जित पोगस न जाए नानक सेव कांडी है जे सेती ही ससु समाए बोड़ी नानक अंतर जापनी हर ताके पारवारे अपराय साथी।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चों नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चों पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तों विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकता। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकंगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकंगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकंगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुँचा रहे हाँ। जे कुछ ऊंट आई है तां ध्यान दिओ ते ओह पूरी करो। आप जितनियां वध तो वध जवानां बच्चों नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फस्ट स्टैप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हाँ। जदों गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सभना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोग सुखिए परलोक सुहेले, नान खार प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अपने आप तो डर लगता है पिया। मेरा रूप विगड़िया होया भयानक है, मुबारक है। जदों बंदे नूं अपने आप कोलों डर लगन लग पवे ना, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਲਕ, ਪਲਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਪਾਂ ਟੂ ਮਾਰੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਸੀ ਕੌਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਭਿਅ ਲੋਕ, ਸਭਿਅਤਾ ਰਹਿਤ, ਸਭਿਅਤਾਹੀਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨਿਓਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੁਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮੈਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ।
मैं पत की पंध मैनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण की रहनी की कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैनू बचा सकता ऐसे आसरे मैं यह आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोगों के औगण कढ़ के यह सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजिया के औगण कढ़ता रहे अपने औगणा ते निगाह ही नहीं पई ते जिन्ना चिर अपने औगणा ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवेगा। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह के पावन दरबार च आप जानते हो साहबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी। इथों तक भी दस्या गया है एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी मिलना। वो एक प्रेमी का मंजा चुक के लियाए घर दे बंदे लिया के वह मंजा रखिया वह कहिंदा मैनू महाराज को लै चलो मरीज जो है रोगी कहिंदा मैनू महाराज के बूहे ते लै चलो वह कह लगे तैनू दवाखाने विच हकीमां ते वैदां दे हवाले करना है महाराज के दर्शन तू तगड़ा होके कर ली महाराज इतने भी आते ने दर्शन बख्शते ने सतगुरु पातशाह उन्हां रोगियों नू आके नाम जपन निरंकार नाल जुड़न का उपदेश भी नाल नाल देंदे रहिंदे सी दवा दारू भी चलता रहे कहिंदा नहीं मैनू हुणे लै चलो महाराज एक बार मैनू वेख लैण सियाणियां ने बहुत किया तैनू वैदा ने वेखना हकीमां ने वेखना महाराज के दर्शन करने ने नहीं महाराज मैनू वेखण जिद कर बैठा रोगी की जिद बड़ी हुंदी उन्हें क्या चलो कोई नहीं लै चलो मंजा चुके महाराज के बूहे ते ले आए दरबार ने कहा सतगुरु आराम फरमा रहे ने विश्राम कर रहे ने हालांकि सतगुरु ने कहा विश्राम करना उन्होंने विश्राम विच भी भगती ते समाधि है उन्होंने इकले हो जाने विच भी समाधि है जपन है सिमरन है पर उपकार की भावना के कुछ व्यवंता होनगियां पर नहीं उसने क्या विश्राम कर रहे ने यह कह लगा मैं इतने प्यार रहन दो जिस वेले वो बाहर निकल गए मैनू एक बार वेख लैन फिर मेरा दवा दारू शुरू करे आवाज अंदर भी पहुंच गई महाराज ने पूछा क्यों भाई की गल है दरबार ने दसिया महाराज रोगी आया वह कहता पहला महाराज मैं वेखन फिर मेरा इलाज शुरू करो महाराज पातशाह आप बाहर आ गए धन गुरु हर राय साहब बाहर आ गए जिस वेले साहिबां के दर्शन होए वह जिहड़ा पासा नहीं सी लै सकदा ना पिया पिया सज्जा खब्बा पासा नहीं सी मोड़ सकदा सारा शरीर गलिया पिया सी वैदा हकीमां ने जिसके बारे जवाब दे दिता होया सी महाराज नूं वेखदिया सार छेती नाल उठण दा जतन करन लगा साथियां ने क्या प्यार हो महाराज ने भी इशारा कीता मगर उठ के बैठ गया मंजे ते उठ के थले उतरन लगा महाराज कहन लगे टिक जा की चाहुंदा है कि कहिंदा बस महाराज मैं ही चाहुंदा सां तुसीं मैनूं वेख लो साहिबां ने मुस्कुरा के उही गल कही भलिया लोका तैनू वेखण के वैद हकीम दवाई देणगे तू ठीक हो जाएगा आ गए तो हुण तैनू ठीक करके तोरांगे साडे वेखण वाली कहड़ी गल है सिर नीवा करके कहन लगा महाराज वह मैनू बाहरों वेखणगे मलमा ला के ठीक करके तोर देणगे मेरे अंदर किन्ना कोड़ वरतिया जिहड़ा फुट के बाहर आ गया तां तुहानू ही दिसना वैदा हकीमां नूं कोई नहीं दिसना किस काम क्रोध ते गंध ने मेरे अंदरों मैनू रोगी कीता ते ओह रोग मेरे बाहर चमड़ी ते आ गए ने वह जिहड़े मेरे अंदर के रोग ने वैदा ते हकीमां नूं नजर नहीं आउंदे साहब जी वह तो तुम देख सकते हो इस करके क्या पहला मैं अंदरों ठीक करना शुरू करो बाहरों ठीक हो जावांगा तो ठीक है पर जे मैं अंदरों रोगी रह गया तो गल की साहब हस पे कह लगे शाबाश जे तेरा अंदर ख्याल भी पै गया ना कि अंदर कुछ रोग है अंदर कुछ बुराई है अंदर कुछ खराबी है तो हुण तेरे ठीक होने के दिन आ गए ये सच करके जानना जिस वेले मनुख का अपने आप से ध्यान ही पै जाए ना कि मेरे अंदर कुछ खराबी है धन गुरु नानक कहिंदे ने मैनू इज्जत का कोई ख्याल नहीं मैनू अपनी करनी का कोई ख्याल नहीं मैं पत की पंध न करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकरार बिगड़िया होया मेरा अंदर का रूप भयानक रूप
तेरा एक नाम तारे संसार मैं यह आस एह आधार मुख निंदा आखा दिन रात इस मूह नाल मैं लोगों की निंदा करदिया जिंदगी बिता रहा दिन रात लोगों दी बुराइयां कढ़िया पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हाँ कि मैं लोगों के घर वेखना ध्यान देगा लोगों के घर वाल वेखना आम तौर पर बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी के मर्द वाल वेखे या कोई मर्द किसी की स्त्री वाल वेखे लेकिन केवल शरीर तक की गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वाल ना वेखता होया किसी की इज्जत वाल वेखता है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति की धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वाल मैली निगाह नाल वेखे इसनू पर घर जोना कहते हैं पराए घर वाल वेखना लेकिन साडे लोगों की निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असी धन भी लोगों के घर का वेखने वड्याइया भी लोगों के घर दियां वेखने जो कुछ किसी के घर च नजर आता है उत्थे ही साडी लोभ की निगाह टिकी हर चीज से साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहब कहते हैं इस तरह मेरी निगाह लोगों के घर पै रही पर घर जो ही देखदा हाँ लोगों के घर वेखदा हाँ बड़ा नीच ते कमीना पण है काम क्रोध तन वसे चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर पर बंदा कातल ते खूनी उदों बनता है जदों ये लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ये खराबियां बंदे कोलों बहुत गुनाह करांदियां हैं साहब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनू नेक इंसान नहीं बन दिता नहीं रहन दिता तानक रूप रहा करतार फाही सुरत मलूकी वेस कई बार ऐसा भी होया कि वह तो लोग जिन्हों की गल महाराज ने जिक्र किया इतने वो लोग तो बाहरों भी गंदे रहते सफाई बाहरले जीवन की भी नहीं रखते बाहरों भी मर्यादा नहीं रखते पर कई बार ऐसा भी होया कि आम बंदियां ने बाहरों जे बहुत सोहना साधा वाला वेस धारण बना लिया संतां वाला वेस धारण कर लिया साहब कहिंदे ने ऐसा भी होया फाही सुरत दिमाग में आया है कि मैं लोगों को फसाव किस तरह लोग फसन किस तरह मेरी फाही विच किवें आउण मैं लोगों को किस तरह अपने चुंगल च लै सकां मलूकी वेस बाहरों मेरा नेक इंसाना वाला साधा वाला फकीर वाला वेस है हौ ठगवाड़ा ठगी देस मैं ठग लोगों को ठगण ते लगा होया खरा सियाणा बहुता भार उंज तां लोकी मैनूं सियाणा समझदे ने मैं अपने आप च सियाणा बनदा भी बहुत हाँ मगर ठगी ते पाप दा भार मैं अपने सिर ते वधाई चलिया जा रहा तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर मालक तेरियां रहमतां ते बख्शिशां दा मैं शाकर ना होया शुकराना ना कीता किरत कण बन गया जेड़ा बंदा किसे दा लै के किसे दा खा के फिर उहदा भी बुरा चितवे उसनू हराम खोर कह देने आप खा के हराम करन वाला या बिना कीते खान वाला बिना कुछ कीतियां दे खा के डकार मार जान वाला बंदा उसनू हराम खोर कहिंदे जिहड़ा हलाल नहीं करता खादे होए जो कुछ उसनू प्राप्त है उहदा हक अदा नहीं करता साहब कहिंदे ने मैं तेरियां दातां दा शुकराना ना कर सकिया ना मैथों कुछ घाल होई ते ना मैं तेरियां बख्शिशां दा शुकराना कर सकिया बल्कि तैथों बेमुख होया रहा इस तों वड्डा हराम खोर होर की होवेगा मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर मैं तेरे बूहे ते तेरे दर ते उते आके की मुंह विखावांगा मेरे अंदर किन्नी दुष्टताई ते किन्ना चोरां वाली गंदी बिरती है मेरे अंदर पल रही नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार मैं निमाना मैं नीच एक विचार दे रहा हां कि मैं चंगे रूप च नहीं रह रहा मैं कोई चंगा जीवन बतीत नहीं कर रहा धन गुरु नानक का यह शब्द साहबा की यह बाणी सानू अपने अंदर झात पाउण वास्ते एक बहुत प्यारी रोशनी है ते मनुख नू जे अपने अंदर यह रोशनी मार के अपने

सच्ची वडियाई आद और अंत तों ए गुरु दी वडियाई चली आ रही जिसनू के पट्टा ने भी बाणी दे विच फरमान कीता है के बसंत दी ऋतु दे विच जो खिड़े हुए फुल हन सारे संसार दे विच और समुंदर दे विच चल रहियां जो लहरां हन एना नू कोई गिन नहीं सकता। फिर भी जे कोई शिवजी दी तरह ध्यान करके बैठ जावे ते गुरु पासों बख्शा प्राप्त कर लवे ते एना पैंदियां होईयां बारशां दियां बूंदां दी गिनती कर भी लवे संसार दे विच जितने भी फुल हन उन्हां दी भी गिनती कर लवे ते समुंदर दे विच चल रहियां लहरां दी भी गिनती कर लवे मगर जो गुरु दे गुण हन उन्हां गुणां दी गिनती करनी असंभव है। पट भी फरमान कर दे।

सतगुरु दा कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन्हां सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संशय दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है।

जयकार करदा है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है, और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साई फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा सालां बदी मदद कर सकदा है, मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नू फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साई फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नू परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है, और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओ ही सच्चे परमात्मा नू पा सकदा है। साहिबां दा फरमान है।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नू हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है पई मैं मंगा की, हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान, एक दखना हो तै पै मांगू, देवो अपना नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

खट खट रव रहा बनवारी। कहंदे ने दुनिया दे मुसलमान काबे दी ज़ियारत करन तुरे जा रहे सन, ओदां दे कपड़े पहने हुए। कबीर जी कहंदे ने मैं भी तुर पिया भई शायद परमात्मा रब उत्थे मिल जावे। कबीर हज काबे हो जाए था, कहंदे ने अगे मैनू खुदा मिल पिया ते खुदा ने मेरे नाल झगड़ा कीता। कहन लगे कबीर किथे चले हैं? मैं क्या मालिक मैं तां तैनू मिलन चलिया। तां कहंदे ने नाराज हो गए मेरे नाल झगड़ा कीता भई लोगां दी तां मत मारी गई है तेरी भी मारी गई।

ब्रह्मा एदियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पाती बिसन डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोलेनाथ शंकर फूलां विच वसदा है।

तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपन वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई।